0: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: This is Inspire FM with you 24 hours a day. Inspire. I have

0: Inspire FM on 105.1 FM.
1: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: I have

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: कहते हैं कि जिंदगी ऐसी थी कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। इंसान तब समझदार नहीं होता जनाब जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातें समझने लगता है। कहते हैं कि जिंदगी के पर्चे में सवाल बहुत सारे और मुश्किल हैं, लेकिन सब सवाल लाजमी हैं, उनका हल चाहिए, उनको हम छोड़ नहीं सकते। कंपल्सरी क्वेश्चंस, अगर हमने उनका जवाब ना दिया तो शायद फेल हो जाए, और अगर अल्लाह की रहमत के उस को थाम लेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह की रहमत की आगोश में आने की दुआ मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और रब उसमें बरकतें डालेगा, वो बड़ा माफ करने वाला है। अच्छा जी, जिंदगी में कुछ रंजो गम हैं तो इसमें खुशी की लहरें भी हैं। जिंदगी अगर जहर का प्याला है तो इसमें शहद सी मिठास भी है। जिंदगी अगर तपता हुआ सहरा है तो इसमें घनी छांव भी है। जिंदगी में अगर कांटे हैं तो फूल भी हैं, आग है तो पानी भी है। हम तो कहते हैं जनाब शम्मा की तरह जिंदगी बसर कीजिए जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है।

जिंदगी वक्त खाती है, जमाने निकल जाती है, कभी कभी सदियां हड़प कर जाती है और टस से मस नहीं होती, और कभी कभी एक लम्हे में कई इनकलाबात बर्पा कर देती है। बहरहाल जिंदगी जिंदगी के दरमियान ही रहती है, ऐसे जैसे ये अपने ही समंदर का खुद ही एक जजीरा हो। जिंदगी से पहले भी जिंदगी थी और जिंदगी के बाद भी जिंदगी ही होगी। जिंदगी मरती नहीं, मर सकती नहीं, ना ही ये हमेशा जिंदा रह सकती है। जिंदगी हमेशा कायम है और हमेशा तब्दील भी होती रहती है। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क है सामीन, एक आगे और एक पीछे, मगर ना आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तोहीन, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले। इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी जहां फूलने फलने का नाम है, वहां अपनी आग में जलने का नाम है। जिंदगी तखलीक करती है और अपनी तखलीक के मराहिल में तहलील भी होती रहती है। इस तरह जिंदगी होने और ना होने के दरमियान ही रहती है। जलती बुझती जिंदगी बस उम्मीद व आस में रहती है। ये सफेद और स्याह धागे से बुना हुआ खूबसूरत मलबूस है। इसमें बहुत कुछ है, इसमें कहके भी हैं और हिचकियां और सिसकियां भी। जिंदगी गरीबों के कच्चे घरौंदों में भी सरशार रह सकती है और अमीरों के पक्के मोहल्लात में बीमार भी रह सकती है। लास्ट ईयर मेरा, मैं अपने आबाई गांव में गया। क्या देखता हूं कि हमारे इस तरफ तो कुछ कोठियां वगैरह बनी हुई हैं, अब तो मोहल्लात की तामीर हो रही है। दूसरी तरफ जो हमारा घर है वो कुछ टेनेंट हैं, और मैं जब शाम को बैठता था तो देखता था कि वहां से गिगलिंग, जोकिंग, फैमिली वैल्यूज कहके खुशियां बर्पा होती थी। और मैं अपने छोटे भाई से पूछता हूं कि हमारे इस तरफ तो बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन कभी इनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कभी जब भी इनको देखे उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं, और ये देखो कितने खुश हैं। तो कैनिड कहता है कि मैं तो हर रोज ये देखता हूं, शाम का खाना वो इकट्ठे बैठकर खाते हैं, मां बाप, बहन भाई, उनके दादा जान, दादी जान, और मैं बड़ा एंजॉय करता था। ये बात सच है सामीन के, यू कांट बाय हैप्पीनेस फ्रॉम मनी, पैसों से आप खुशियां नहीं खरीद सकते। अगर दिली सुकून हासिल हो जाए, मेरे ख्याल में आप बहुत अमीर इंसान हैं। आपको पता है जितने भी बिलियनर्स होते हैं ये इंतहाई गरीब लोग हैं। मोस्ट को कहूंगा, मोस्ट को, ना उनके पास अपने खाने का वक्त है, ना उनको अपनी फैमिली, उनको टाइम देने का वक्त होता है। वो तो पैसे के पीछे हैं, ना वो पहन सकते हैं, ना वो लगा सकते हैं, ना वो खा सकते हैं। कभी इधर मीटिंग्स, कभी ये जा, कभी वो जा, क्या करना इतने पैसों का। हाँ, जरूरी है जिंदगी की जरूरियात में पैसा इतना होना चाहिए कि आप अपना वक्त गुजार सकें। माल को जमा करके रखना और फिर उसके ऊपर जकात ना देना, खैर बात तूल पकड़ लेगी, लेकिन याद रखें कि बरोज़े हशर गरीब इंसान 100 out of 100 लेकर पास हो जाएगा, और मामला जब अमीर पर आएगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, अमीर फंस जाएगा। तो जनाब, जिंदगी गरीबों के कच्चे घरौंदों में भी जो है वो खुश रह सकती है, सरशार रह सकती है, और अमीर के पक्के मोहल्लात में बीमार रह सकती है। जिंदगी अगर चाहे तो गर्दशे हालात से मंसूब हो जाती है, और अगर
پسند فرمائے تو گردش زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر اپنے لیے نئے جہاں پیدا کرتی رہتی ہے۔ اچھا، زندگی کسی فارمولے میں مقید نہیں ہو سکتی، اسے کچھ کہہ لیجئے، یہ سنتی ہے، مسکراتی ہے، اور کچھ اور ہی روپ اختیار کر کے اس فارمولے سے باہر نکل آتی ہے۔ اگر زندگی کو مسلسل سفر کہا جائے تو مکمل قیام کیا ہے؟ اگر زندگی کو بیداری کہا جائے تو نیند اور غفلت کو کیا کہا جائے؟ اگر زندگی کو محبت کہہ لیا جائے تو نفرت بھی تو زندگی ہے، بلکہ نفرت زیادہ زندہ ہے۔ نفرت، غصہ، حسد، انتقام زندگی کو زیادہ ایکٹیو رکھ سکتے ہیں، زیادہ متحرک رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال محبت اور نفرت زندگی ہی کے نام ہیں۔ اگر مذہب کو زندگی مانا جائے تو لا مذہبیت کیا ہے؟ اگر زندگی زمین ہے تو آسمان کیا ہے؟ اگر مخلوق کو زندگی کہا جائے تو مخلوق پیدا کرنے والی ذات کو کیا کہا جائے؟ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی بہت مشکل ہے۔ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا پا گیا یا پھر چلا گیا، اور جو نہ جان سکا وہ ہار گیا، مارا گیا۔ زندگی تلاش میں ہے، کس کی تلاش؟ زندگی اسے تلاش کرتی ہے جو زندگی کو تلاش کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب زندگی کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، جب راز آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے، دونوں کی تلاش میں ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک کا کھیل ختم نہیں ہوتا، یہ کھیل جاری رہتا ہے، یعنی نور و ظلمات کا کھیل، ہونے اور نہ ہونے کا کھیل، ماننے اور نہ ماننے کا کھیل، دن اور رات کا کھیل۔

हम कम अज कम अपनी जिंदगी पर तो राजी रहे। बस जो अपनी जिंदगी पर राजी हो गया वही अल्लाह पर राजी हो गया, और जो अल्लाह पर राजी हो गया अल्लाह इस पर राजी हुआ। जिस इंसान पर इंसान राजी हो गए वो रजाए इलाही पा गया, जो इंसानों से राजी रहा वो राज़े हस्ती पा गया। यही राज है।

जिंदगी के दामन में बेपनाह और बेशुमार नियामतें, इसमें ख्वाहिशें हैं, हसरतें हैं, उम्मीदें हैं, मायूसियां हैं, सदाकतें हैं, धोखे हैं, मेले हैं और तन्हाइयां हैं। जिंदगी समंदर है, अपने बादलों को नामालूम सफर पर रवाना करने वाला, इन्हें अलविदा कहने वाला, और फिर यही समंदर अपने मुसाफिरों को, अपने दरियों को खुशामदीद कहने वाला है। जिंदगी से जिंदगी निकल रही है, जिंदगी में जिंदगी शामिल हो रही है, जिंदगी से जिंदगी जुदा हो रही है, जिंदगी से जिंदगी वासल हो रही है। दरअसल जिंदगी तो जिंदगी है, फराक और वसाल से बहुत बुलंद, हासिल और महरूमी से बहुत बेनियाज, अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों से बाखबर लेकिन गैर मुतासर। जिंदगी बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है, बिलियन ऑफ इयर्स, बहुत बुरी है, लेकिन यही जिंदगी बहुत नई है, बहुत जदीद और बहुत जवान। हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम होगा, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो जो कल जदीद था आज कदीम हो रहा है, और जो आज जदीद है ये कल कदीम हो जाएगा। पुराने लोग, पुरानी बातें, लेकिन कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। यूं तो जिंदगी बयक वक्त कदीम और जदीद है, पुराने शहर ओल्ड सिटीज और नए इंसान, पुराने इंसान और नए शहर। आज का इंसान पुराने खंडरात में खुश रहता है, ये देखना चाहता है कि वो लोग कौन थे जो इस खंडर में कभी आबाद थे, ये खंडर किसी जमाने में मोहल्लात थे। वो आपको वाकया याद होगा जब मलकाए जो है सबा थी, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल होती है तो वह ऐसा शीशे का महल था, उसका फ्लोर जो था ऐसे था कि उसके नीचे पानी बह रहा था और उसके ऊपर शीशा था, और जब उस पर चलने लगती है तो उसको वो थोड़ा थोड़े अपने कपड़ों को ऊपर कर लेती है कि शायद गीले होने से बच जाए, और फिर जब उसे एहसास होता है कि पानी शायद शीशे के नीचे। ये मत समझिए कि शायद हम बहुत जदीद दौर में रह रहे हैं, हमसे पहले क्या पता कितना जदीद दौर गुजर चुका है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाएं मुसखर थी, वो बहुत सारे जो मुसाफत थी वो लम्हों में तय कर लिया करते थे, महीनों की मुसाफत को लम्हों में तय कर लिया करते थे। चिरिंद परिंद जिन्नात सब उनके उनके अंडर कर दिए गए थे, जमीन का निजाम उनको सौंप दिया गया था। अच्छा सामीन, अभी वक्त होता है अच्छे से कलाम का। ये कलाम आपको प्रोग्राम के ब्रेक की जानब ले जाएगा, और ब्रेक के उस पार इंशाल्लाह थोड़ा सा टच पोएट्री को, और फिर प्रोग्राम का बाकी हिस्सा जो जारी हो सारी रहेगा। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।

दिल के सच्चे लोग अक्सर आजमाए जाते हैं। दिल के सच्चे लोग अक्सर आजमाए जाते हैं। भलाई के सिले में जख्म खाए जाते हैं। जो मुखलिस हैं उन्हें बेवकूफ कहते हैं लोग। मतलब प्रस्त यहां पर अकलमंद कहलाए जाते हैं। हमेशा होता है खुद को बांटने वालों का अंजाम यही। पहले पहल वही लोग राह से हटाए जाते हैं। दिलों में जिनके वफाओं के चिराग चलते हैं वो जमाने में महफिलों में सताए जाते हैं। दिलों में जिनके वफाओं के चिराग चलते हैं वो जमाने की महफिलों में सताए जाते हैं।

बड़े बाअदब हैं अच्छों में शुमार रखते हैं, बड़े बाअदब हैं अच्छों में शुमार रखते हैं, लबों पे फूल दिलों में खार रखते हैं, बड़े खुश सुखन खुश लबास हैं लेकिन ये अपने बातन में कितने गुबार रखते हैं, लबों पे जिक्र अखलास ओ वफा लेकिन पसे नकाब नीयत में इंतशार रखते हैं, कभी जो वक्त पड़े बदलते हैं चेहरे, करते हैं वार हाथों में प्यार रखते हैं, ये शहरे मुनाफ़िक़त भी खूब है जहां जो जितना मुखलस हो इतने ही अग्यार रखते हैं।

लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मैं कदे जर्फ का मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों हैं? मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ आके मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? मैं ना जुगनू हूं, दिया हूं, ना कोई तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों?

पुराने शहर और नए इंसान, पुराने इंसान और नए शहर। आज का इंसान पुराने खंडरात में खुश रहता है और ये देखना चाहता है, जैसे मोइनजोदड़ो और इस तरह के बेशुमार खंडरात को हमने

कूद कूद कर ये देखा कि वहां क्या था। नया इंसान पुरानी कायनात को दरियाफत करने निकला है। वो उसे तरक्की कहता है। ये अजीब बात है कि आज का इंसान आज भी पुरानी तर्ज पर पैदा होता है, पुराने मुसन्फीन को पढ़ता है और नए इल्म का इजहार करता है। नई बात क्या है? पुराने चेहरे हैं, पुरानी आंखें हैं, पुराने आंसू हैं, वही कुछ है जो था। और फिर नए इंसान के लिए पुरानी मंजिल, पुराने कब्रस्तान, ये सब बातें समझ में नहीं आ सकती। ये सब जिंदगी है, बारात भी जिंदगी है और जनाजा भी जिंदगी, समझना मुश्किल है। ये दुनिया बाबल का घर और वो दुनिया ससुराल, ताज्जुब है चार कहा डोली ले चले और फिर चार भाई जनाजा ले चले। एक ही है, सब एक है, सब जलवे जिंदगी के हैं, ये सब अबवाब किताबे हस्ती के हैं, इब्तदा और इंतहा से बेनियाज। जिंदगी आगाज से पहले भी थी और अंजाम के बाद भी होगी। जिंदगी तो बस जिंदगी है, इसका यौम पैदाइश और इसका यौम वसाल क्या मालूम।

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है लेकिन घबराइए नहीं, इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
2: Did you see that guy on TV?
3: What, that No Comment guy?
2: Yeah, he was sick. What was his name?
3: I think it was Atiq Malik.
2: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
4: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
2: Liberty Law, there when you need us most.
5: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
6: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
7: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
8: Back to school tips on Inspire FM. School's starting up again soon, but don't be afraid. If you're revised and pay attention in class, getting through SATs, GCSEs or A-levels will be a breeze. Revision is key to get you through these rigorous exams, but make dua and put the effort in, and you'll be fine. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
10: Hukum bhi ho sakta tha. Ihmadullah. Allah ki hamd karo. Baki aage suratul baqara mein aaya ka ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Insaniyat apne rab ki ibadat karo. Isi tarah Fatiha ke shuru mein bhi kaha ja sakta tha, insaniyat Allah ki hamd karo. इसको समझने के लिए मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। आप में से किन के बच्चे हैं? ओके, जिनके बच्चे हैं, आपने अपने अपने बेटे से कहा बेटा पानी ला दो, हुक्म दिया ना पानी ला दो। अब उसके पास अब दो इख्तियार हैं, या तो वो लाएगा या तो वो लाएगा। जब आप आमतौर पे किसी को हुक्म देते हो तो बात क्या होती है कि अब उस पर डिपेंड करता है वो करे या ना करे, वो करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अगर हमद का हुक्म दिया होता ना, तो बात किस पे डिपेंड करती? हम पे, हम करेंगे तो होगी। अब हुक्म हमने ना माना तो क्या होगा? नहीं होगी, नहीं होगी। तो इबादत तो नहीं होगी अगर हम अब नहीं बनेंगे उबुदू, लेकिन हम करो ना करो होगी। उसका तुम तो अब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती वो चीज। तो इसीलिए अहमदू और हमदन लिल्लाह भी उस दर्जे के नहीं है जिस दर्जे के अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, हम से आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई नाम बताएं मुझे जो आपको बताओ। रहमान, अच्छा, और अल मलिक, अल खुदूस। अगर मैं कहूं अल्हम्दुलिर्रहमान गलत है, अल्हम्दुलिल मलिक गलत है, अल्हम्दुलिल खालिक, अल्हम्दुलिल रहीम, अल्हम्दुलिल हकीम, अल्हम्दुलिल हादी, अल्हम्दुलिल मुतकब्बिर, अल्हम्दुलिल जब्बार, अल्हम्दुलिल वहाब, सब सही है ना? क्योंकि ये तमाम किसके नाम है? अल्लाह ताला ही के नाम है। लेकिन उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने एक नाम का इख्तियार किया हम के साथ, अल्हम्दुलिल रहमान नहीं कहा। यहां तक कि आप अल्लाह का लफ्ज निकाल भी दो ना, तो अरबी के एतबार से बात फिर भी समझ में आ जाएगी। अल्हम्दुलिर्रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का लफ्ज मैंने निकाल दिया, बात फिर भी समझ में आ रही है। तो अल्लाह के नाम का लफ्ज यहां पर उसका क्या फायदा है, ये समझने की कोशिश करें। पहली बात, जब किसी से आपका तारुफ होता है ना, पहली बात क्या होती है? नाम। नाम बाद में आपके बारे में तफासील। पहली चीज अल्लाह ताला ने अपने नाम का जिक्र किया, क्योंकि फातिहा कुरान में फातिहा अल्लाह ताला से खुद तारुफ है। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं, और तारुफ में किस चीज की ज्यादा अहमियत होती है? नाम की। नाम की देखिए, अगर खाली रब कहा होता तो एक कंफ्यूजन हो जाती। इस कंफ्यूजन का जिक्र भी कुरान में है। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो जादूगर थे, जब उन्होंने अपनी लाठियों को, अपनी रस्सियों को खाए जाते देखा तो क्या किया उन्होंने? क्या किया था? सबको पता है, सजदा किया था ना। अच्छा, वो जब उन्होंने सजदा किया तो फिरौन जरा कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है? उसको समझ नहीं आई बात, ये हो क्या रहा है? तो वो समझा शायद ये राउंड टू के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अब खड़े होकर दोबारा मुकाबला करेंगे। अब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने? अच्छा, क्या लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? उन्होंने ही कहा हम अल्लाह पर ईमान ले आए। क्या कहा? हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। अब फिरौन फिर भी कंफ्यूज, हाँ हाँ मुझे पता है मुझ पर ईमान लाए हो, फिर भी, क्योंकि जब उसने रब्बुल आलमीन सुना तो वो किसके बारे में सोच रहा था? उसने तो रब का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होते देखा है? अपने लिए। तो उसने जब उनकी बात सुनी, खड़े होकर वो इस्लाम का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, वो समझ रहा है उसकी बात हो रही है। तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ा, बाद में बात मजीद वाजे करनी पड़ी अगली आयत में, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून का रब। गधे, गधे का तर्जुमा में मैंने इजाफा किया है, लेकिन बात यही हो रही है। जब उसने रब्बिल आलमीन सुना तो उसको कंफ्यूजन, क्योंकि नाम नहीं था। नाम नहीं, फातिहा में तारुफ है तो नाम जरूरी है। एक और बात इसके बारे में समझ लें, ये भी बड़ी बड़ी अहम बात है। अगर मैं कहूं ये बहुत अच्छा टीचर है, मैं किस चीज की तारीफ कर रहा हूं? उसकी ड्राइविंग की, उसकी कुकिंग की, उसके खाने पकाने की, उसके घर साफ करने की, किस चीज की तारीफ कर रहा हूं? उसके पढ़ाने की। अगर मैं कोई ये बहुत अच्छी मां है, मैं किस चीज की तारीफ कर रहा हूं? उसकी शॉपिंग की, उसकी बच्चों की तरबियत की तारीफ कर रहा हूं ना। अगर मैं अल्लाह ताला की तारीफ करूं खालिक के नाम से, अल्हम्दुलिल खालिक, मैंने किस चीज की तारीफ की है? क्या अजीम मखलूक है उसकी, आप क्या बनाता है? अगर मैं कहूं अल्हम्दुलिल हादी, क्या जबरदस्त हिदायत देता है, الحمد للحكيم اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں, الحمد للعلیم اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں, الحمد للوہاب اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں, الحمد للرازق اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں, رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں, اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ, اندازہ کرو ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے, ایک چھوٹی سی الفاظ ہے الحمدللہ, اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو کچھ نہ کچھ رہ جائے گا, کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا, اس سیشن میں آپ کو میں رب العالمین کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. میں ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. اور رحمان الرحیم للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے, اس کے بعد الرحمن, اس کے بعد الرحیم, اس کے بعد مالک یوم الدین, اور قرآن میں اور جگہ الغفور, یو نو, الشکور, الحلیم, العلیم, الحکیم, کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف, پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد, وہ کیا ہے؟ رب. رب, ہر چیز سے پہلے رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے, اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق, بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد, استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں, بچہ. اگر میں کہوں مالک, جو غلام ہے, مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں, آجر, آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا, کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا, کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. خالق, خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے. مخلوق سے. رحم کرنے والا, مرحوم سے, جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا.

नु क्या है वो ताल्लुक पैदा होगा किस लफ्ज से? रब से, रब से। इससे ये बात हमें भी समझ आ गई कि असल बुनियादी ताल्लुक मेरा अल्लाह ताला से, अगर वो रब है तो मैं क्या बना? अब्द, गुलाम। अब गुलाम को कहते हैं असल में। ये बुनियादी रिश्ता है मेरा अल्लाह ताला से। बाकी तमाम रिश्ते, वो रहम करने वाला है मैं रहम लेने वाला हूं, वो रिज्क देने वाला है मैं रिज्क लेने वाला हूं, वो मगफरत करने वाला है मैं मगफरत लेने वाला हूं, ये सारे रिश्ते दूसरे दर्जे में हैं। और ये सारे रिश्ते हो ही नहीं सकते जब तक कि बुनियादी रिश्ता ना हो। देखें, आपका एक रिश्ता है अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉयर के साथ, आजिर के साथ, उसमें आप उसके साथ जॉब कर रहे हो, लेकिन उस रिश्ते में कुछ दोस्ती भी है, कुछ कभी कभी गपशप भी है, कुछ और चीजें भी हैं। लेकिन अगर मुलाजमत नहीं रही तो वो बाकी सारे रिश्ते ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो खत्म हो जाते हैं। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, बुनियादी रिश्ता क्या है? इसने सिखाना है, उसने सीखना है। उसके अलावा उसमें शफकत भी है, उसमें कुछ हंसी मजाक भी है, उसमें और चीजें भी हैं। लेकिन अगर वो बुनियादी रिश्ता नहीं रहा तो वो बाकी सारी चीजें भी, उसकी कोई बुनियाद नहीं रहती ना। इसी तरह अल्लाह ताला का जो हमारे साथ रिश्ता है उसकी बुनियाद है कि वो रब है और मैं क्या हूं। अब जब तक आप रब को नहीं समझेंगे, यानी आप रिश्ते की एक तरफ को नहीं समझेंगे, आपको दूसरी तरफ समझ नहीं आएगी। लेकिन किसी भी रिश्ते में, जैसे अगर टीचर होता है, क्लास के पहले दिन आके समझाता है, देखो मैं एक मुख्तलिफ किस्म का टीचर हूं, मेरी तवक्कोआत ये हैं, मैं ऐसे ऐसे किस्म का टीचर हूं, होता है ना। और आपको, आपकी जिंदगी में आपको मुख्तलिफ किस्म के अजाब, आई मीन टीचर मिले होंगे, और हर टीचर की अलग पर्सनैलिटी होती है कि नहीं। वो आपको समझाता है कि उसकी तवक्कोआत क्या है, उसकी क्लास कैसे होगी, उसमें कैसा बिहेव करना है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक ही सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में कॉलेज में मेरे दो प्रोफेसर थे, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद। एक पहले दिन आके कहता है तुम सबको मैंने ए देना है, शुरू पहली बात उसने की, तुम सबको मैंने ए देना है, तुम फिक्र ही ना करो, बस थोड़े से काम, बहुत ही आसान काम तुम्हें करने होंगे और ए तुम्हारा है, शुरू से इनकरेज। अगली क्लास में मैं गया, शुरू में आके कहता है तुम में से अक्सरियत फेल होगी, मुस्तहिक होगे तो उजरत देगा, उजरत दी जाती है मुलाजिम को, क्योंकि मुलाजिम अपने आजिर को, अपने एम्प्लॉयर को टाइम देता है, मेहनत देता है, और उसके जवाब में, उसके एवज में उसको उजरत दी जाती है। लेकिन रब आपका मालिक है, क्योंकि वो मालिक है, आपका कोई हक है ही नहीं, वो आपका पूरा पूरा सरबराह है, सैयद है, आपके कोई राइट्स हैं ही नहीं। तो जब वो कुछ देगा तो वो सैलरी नहीं देगा, पेमेंट नहीं देगा, उजरत नहीं देगा, क्या देगा? इनाम देगा। सो वो मुनहिम बन गया, तोहफे देने वाला, जो कुछ देगा वो तोहफा होगा। नहीं देगा तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। देखिए, आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं देगा ना आपका पे चेक, तो आप कंप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपकी एक अरेंजमेंट है। लेकिन रब जब देगा तो शुक्र, नहीं देगा तो मैं पूछने वाला कौन हूं, मेरा तो है ही नहीं वो। मुनअम कितने हो गए? तीन हो गए। अच्छा, चौथा अल-मुरब्बी। अल-मुरब्बी अरबी का लफ्ज, दोबारा, मालिक, सैयद, मुनअम और फिर मुरब्बी। मुरब्बी कहते हैं अरबी में, जो पौधे को उगाता है ना उसे मुरब्बी कहा जाता है। ओके, जो बागबान होता है ना उसे भी मुरब्बी कहते हैं, किसान को भी मुरब्बी कहते हैं। क्यों? वो पौधे का बहुत बारीक ख्याल करके, उसके इर्द गिर्द के कीड़े वगैरह हटा के, उस पर जितना पानी चाहिए उससे कम ज्यादा ना हो, और उसको ज्यादा आंधी ना आ जाए, बहुत ज्यादा तेज धूप ना आ जाए, उन सब चीजों से बचा के जब वो पौधे की नशोनुमा कर रहा होता है उस वक्त उसको मुरब्बी कहा जाता है। यही लफ्ज अल्लाह ताला ने वालदैन के लिए इस्तेमाल किया है कि वो बच्चों की तरबियत करते हैं। तरबिया मुरब्बी से निकला है। तरबियत यानी जिस तरह पौधे को उगाया जाता है, इसी तरह बच्चे का ख्याल बहुत बारीक तरीके से किया जाता है। रब के मायने में मुरब्बी भी है, मुरब्बी जो बहुत ख्याल के साथ हमारी नशोनुमा करता है, हमारी तरबियत करता है। तरबियत का लफ्ज सिर्फ अखलाक के लिए नहीं, हमारे यहां तो अखलाक के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी तरबियत अच्छी है, इसकी तरबियत खराब है।
تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو اگا رہے ہو.

0: होगे ना, आप बड़े हो रहे हैं, आपकी आपकी कुव्वत में इजाफा हो रहा है, आपकी अकल में इजाफा हो रहा है, आपकी सलाहियत में इजाफा हो रहा है, वो सब तरबियत कहा जाता है उसको। अब कितने नाम हो गए?
1: चार।
0: अब आखिरी नाम कय्यम। अल कय्यम, अल कय्यम आसान लफ्ज है, कायम रखने वाला। अभी ये नई बिल्डिंग बनी है, ठीक है, बिल्डिंग्स के साथ क्या होता है कि कुछ अर्सा गुजर जाता है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, छत का ख्याल करना पड़ता है, फाउंडेशन चेक करनी पड़ती है, सीलन वगैरह लग जाए देखना पड़ता है, मेंटेनेंस होती है। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, उन सब की भी क्या करनी पड़ती है? मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लेकिन हमारी मेंटेनेंस क्या है कि खाना बेहतर खाओ, अपनी नींद का सही तरह से अहतमाम करो, गेट इनफ स्लीप, राइट, और थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, ये मेंटेन फिजिकल मेंटेनेंस है हमारी। लेकिन अल्लाह ताला जब कय्यम है ना, वो इस तरह कय्यम है कि मेरे दिल की एक धड़कन से अगली धड़कन तक उसको इजाजत देनी पड़ती है, मैं चलूं और फिर चलूं और फिर मैं चलूं, और जो खून मेरी रगों में चल रहा है उसको इजाजत देनी, और उसको मेंटेन कौन कर रहा है? एक एक लम्हा, एक एक सेल, वो अल्लाह ताला है कय्यम। वो अगर एक दफा भी ध्यान देना छोड़ दे तो मेरा वजूद ही ना रहे। देखें, एक फलसफा है, खुदा के बारे में कई फलसफे हैं, उसमें से एक फलसफा ये है कि इस खुदा ने कायनात बनाई, उसको छोड़ दिया, अब वो ऑटो पायलट पे चल रही है, खुद ही से चल रही है। लेकिन हमारा फलसफा है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमारा रब है, और रब से मुराद ये है कि कुछ भी खुद से नहीं चल रहा, कुछ भी खुद से नहीं चल रहा, हर चीज को मेंटेन किया जा रहा है, उसको कायम रखा जा रहा है हर लम्हे। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, एक पत्ता नहीं गिरता, एक पत्ता अपनी जगह से नहीं हिलता, हवा का हल्का सा झोंका नहीं लगता, एक एक सेल मेरे जिस्म का, वो तमाम मेंटेन किए हुए हैं। यह है अल कय्यम। ये सिर्फ लफ्ज था क्या? रब। अब इससे मेरा और अल्लाह का क्या ताल्लुक बना, आप इसको समझ लें। अब आपका रिव्यू होगा, पहली चीज क्या थी? ओके, हम भी कुछ चीजों के मालिक होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। अच्छा, अगर आप किसी चीज के मालिक हो तो क्या ये लाजमी है कि आपकी पूरी अथॉरिटी है उसके ऊपर, आप उसके सरदार भी हो? जैसे फर्ज करें आप गाड़ी के मालिक हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप जैसे चाहें गाड़ी चलाएं? ऐसा तो नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि आप गाड़ी के साथ जो चाहें करें, कोई भी आपस में कोई आगे से इंटरवीन नहीं करेगा? ना। आप में से कुछ होम ओनर है, आपने घर लिया हुआ है, क्या ये मुमकिन है कि आप घर में जो तब्दीली लाना चाहें लाएं, या हुकूमत पीछे से आ जाती है या सोसाइटी आ जाती है, कहते ये नहीं आप कर सकते, ये कलर आप नहीं यूज कर सकते, ये आप बाहर ऐसे नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं? आप ओन करते भी हो लेकिन फिर भी आपके को रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं? तो आप मालिक तो हो, सैयद नहीं हो, होता है कि नहीं? और कभी कोई सैयद होता है लेकिन मालिक नहीं होता, वो तो वाजे है। तीसरा नाम क्या था मालिक और सैयद के अलावा? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि आप किसी चीज को ओन करते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसका ख्याल नहीं करते? कभी होता है? किसी का बाग है उसने छोड़ा हुआ है, किसी की गाड़ी है उसका ख्याल नहीं करना, किसी की साइकिल है बाहर बारिश में जंग लग रहा है उसे, होता है कि नहीं? यानी आप ओन तो करते हो लेकिन आप उसको कायम नहीं रख रहे, या आप ओन तो करते हो लेकिन आपने उसकी तरबियत का कोई एहतमाम नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया, उसको डेवलप नहीं किया, होता है कि नहीं? अल्लाह ताला सिर्फ ऐसा रब नहीं है जो ओन करता है, यानी उसकी मिल्कियत तो है लेकिन फिर उसने छोड़ दिया। मालिक होने के बाद मुरब्बी, सैयद, मुनाइम, कय्यम, और ये सारी चीजें मिलाकर क्या लफ्ज बना? रब। भारी लफ्ज है, भारी लफ्ज है। लेकिन इसकी बुनियाद इस तरह समझ लें कि एक अरबी में जब किसी लफ्ज के कई मायने होते हैं ना, तो एक होता है बुनियादी मायना और फिर बाकी उसके दूसरे दर्जे में मायने होते हैं। तो बुनियादी मायना फिर भी मालिक का है, और उसके साथ ये जो बाकी चार है ना, उसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन इससे बुनियादी मायने में फर्क नहीं आता। बुनियादी मायना फिर भी क्या है? मालिक का। ये आखिरी बात होगी इस सेशन के लिए, इसको भी समझ लें अच्छी तरह कि इसकी क्या अहमियत है। असल में इसकी जो इजाफत है ना, एक्चुअली ये बात मैं मालिक यौमिद्दीन में फिर सही से समझाऊंगा, अभी अल आलमीन समझ लें, क्योंकि ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी अस्समावाति वल अर्द, और जगह देखा है अस्समावाति वल अर्द, कभी सुना है क्या है अस्समावाति वल अर्द? आसमान जमीन का रब, कितनी दफा सुनते आए हम, लेकिन फातिहा में नहीं है, फातिहा में है रब्बिल आलमीन। और अल आलमीन का तर्जुमा आमतौर पर क्या किया जाता है? तमाम जहानों का रब, सुना होगा आपने है ना, तमाम जहानों का मालिक। एक तो मालिक से हमें हटना पड़ेगा क्योंकि मालिक बाद में आ रहा है, तो रब पे रखते हैं बात और रब के ये पांच मायने अपने जहन में रखते हैं, लेकिन आलमीन को समझ लें। अगर लफ्ज इस्तेमाल होता अल आवालिम, अल आवालिम अरबी में जो वाहिद लफ्ज है वो है आलम, आलम उर्दू में भी हम आलम कहते हैं, उसकी जमा है आवालिम। अगर आवालिम का लफ्ज इस्तेमाल होता तो हम कहते तमाम जहानों का रब, कोई मसला नहीं। आवालिम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आवालिम, नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको कहते हैं जमा मुज़क्कर सालिम अरबी में, उसकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ लें, बात यह है कि यहां कहा जा रहा है कि एक तो है जब आप जहानों के बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो कि कितने सितारे हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कायनात कितनी बड़ी है, उसके बारे में बात नहीं हो रही। जब उसके बारे में बात होती है कुरान में तो कहा जाता है अस्समावाती वल अर्द, ये नहीं कहा जा रहा यहां पे। आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है दुनिया, लोगों के जहानों की बात हो रही है, लोगों की दुनिया है। जैसे पाकिस्तान आया हूं, अपने पेरेंट्स को कॉल की पहली दफा जब मैं आया था कुछ महीने पहले 29 साल बाद, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहा ये तो और ही दुनिया है, ये कोई और ही आलम है। तुम में से कोई ऑस्ट्रेलिया जाए, कोई और ही क्या है, आलम है। मैं न्यूयॉर्क में कॉलेज गया था, पहली दफा कैलिफोर्निया गया, वो कोई और ही आलम था न्यूयॉर्क से हटके। हर सोसाइटी एक अलग किस्म का क्या होता है, आलम होता है। आपके दादा की जनरेशन, आपके परदादा की जनरेशन, आप उनसे पूछें उस वक्त कैसा था पाकिस्तान, उस वक्त कैसा था, लोग उस वक्त कैसे थे, वो कहेंगे वो कोई और ही आलम था। ये तो ये दुनिया बदल गई है। मुझे एक साहब मिले, पाकिस्तानी साहब थे, मैं ओक्लाहोमा सिटी गया था, वहां उनसे मुलाकात हुई। एक मैंने कोई हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा तो वो ग्रोसरी रेस्टोरेंट नहीं मिला, एक ग्रोसरी स्टोर मिला हलाल। मैंने कहा चलो वहां से कुछ देखते हैं। मैं मिला एक पाकिस्तानी साहब थे, वहां 55 साल से रह रहे हैं, 55 साल से। तो मैंने कहा जब आप आए थे तो ये कैसा था? कहते हैं एक और ही दुनिया थी ये। राइट, तो आलमीन में क्या क्या चीजें शामिल हो गई, मुख्तलिफ सोसाइटीज, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ जनरेशंस, मुख्तलिफ पुश्तें। 1000 साल पहले दुनिया कोई और चीज थी, 3000 साल पहले कोई और आलम था, 20,000 साल पहले कोई और आलम था, आज से 100 साल बाद कोई और आलम होगा। और उन तमाम आलमों का रब कौन है? अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है ये। वो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, अरबों का रब नहीं है, पाकिस्तानियों का रब नहीं है, वो हिंदुओं का भी रब है, वो एथिस्ट का भी रब है, वो अमेरिकन्स का भी रब है, वो ऑस्ट्रेलियंस का भी रब है। और उन सब के साथ उसका रिश्ता क्या है? 5 चीजें। उनका मालिक भी है, उनको तोहफे भी देता है, उनका इक्तदार भी उस पर उसका उन सब पर इक्तदार भी रखता है, उन सबको कायम भी किए हुए। ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी ना, अब आपका नजरिया बदल जाता है सारी सोसाइटीज के बारे में दुनिया की। आप ये नहीं देखते ये वाली सोसाइटी इस पर लानत है, ये वाली सोसाइटी जहन्नमी है, ये वाली सोसाइटी ना ना ना, रब्बिल आलमीन। और अगर मुझे अपने रब की निशानियां देखनी है, अपने रब की अजमत देखनी है, तो अल्लाह ताला जिस तरह कहते हैं ना, पहाड़ को देखो, दरिया को देखो, ऊंट को देखो, अब रब्बिल आलमीन कहा तो किस चीज को देखो? मुख्तलिफ सोसाइटीज को देखो, तारीख को देखो, दुनिया कैसी थी, कैसी कैसी सोसाइटीज अल्लाह ने बनाई, कैसे कैसे उलूम में, कैसे फनून में उन्होंने महारत हासिल की, किस कौम को किस चीज में महारत दी, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, इन तमाम की का जिम्मा किसने लिए हुए था? अल्लाह ताला ने, रब्बिल आलमीन। पर इस एक ताबीर के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया खोल दी मेरे सामने, पूरी दुनिया, और उसकी रहमत का दायरा इतना बड़ा हो गया कि वो तो तमाम का ख्याल रखे हुए हैं, तमाम को देखे हुए अपने सामने।
2: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.